अनंत्यक थरंगा अदरे हिते पुरोगे ना दूवी लक थरंग बता अदरे नया वागे मत पिटिंग पैन ना हिता कोई आटती है ना द राहसी ने हिता रंगे ना ना ना कार्ड वध में पैन ना नया हिता और एक मट्ट वितरक अदरे कविलिया लायना